0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, good tidings news for a precious world. In Los Angeles, California, USA, chocolate just got kinder. In June 2026, the chocolate shop Maison Notan opened on Pico Boulevard, bringing handmade French-style bonbons and bars to the city, entirely vegan and OK Kosher Parva certified. Founded by French-raised chocolatiers Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Abergel, the boutique has a philosophy of using fewer, purposeful ingredients such as quality cacao, nuts, and fruit to create indulgent treats without animal people products. Standouts include elegant bonbons in flavors like almond paste and orange, Earl Grey, and caramel, along with bars studded with roasted coconut, raspberries, and caramelized hazelnuts. Customers can watch each chocolate being made by hand through an open kitchen window and learn more about the craft. Three cheers, Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Abergel, for showing that compassion and indulgence can share the same beautiful box. May this gentle French craft continue to flourish and bring joy to the public in the almighty splendor.
2: Kittens rescued and prepared for adoption in Canada. Nikki Wells, a resident of Vancouver Island, British Columbia, helped rescue four vulnerable kittens abandoned near Rural Road in the News Bay. After discovering the cat mother and her babies, Ms. Wells persisted in getting help for them, contacting local animal people welfare advocate Kathy Robinson, operator of Moving On Cat Rescue, to get emergency support. Using humane traps, Ms. Robinson and her team retrieved the kittens and brought them to safety for veterinary care. Veterinary staff reported that the four kittens are now in stable condition and living in foster homes, while their cat mother also received care. Ms. Robinson emphasized that prompt public reporting is vital for ensuring the safety and survival of distressed animal citizens. Our gratitude, Nikki Wells, Kathy Robinson, Moving On Cat Rescue Team, and all involved for saving our precious furry friends. May the rescued cat family live long, healthy, and joyful lives in celestial oneness.
1: Now it's time to taste some bubbly giggle soda with the joke of the day entitled The New Noise.
3: Ralph told his friend Tatiana about his latest attempt at home repair.
4: I tried fixing my dishwasher at home.
5: Did it work?
4: Well, not exactly. It makes a brand new noise now.
5: Sorry to hear that.
4: But I'm an optimist. I now simply have more information to go off of.
6: And now we have a heartline in Hindi with multiple language subtitles from Ayushi in India.
7: Meri Param Sundar Master, Meri Master, Meri Param Priye, Aapka Dhanyavaad, Main Aapse Prem Karti Hoon. Master, Sada Mere Saath Rehne Ke Liye Dhanyavaad, Aur Aapko Janne Ke Liye, Mujhe Samay Aur Avsar Dene Ke Liye Dhanyavaad. Aap Sada Mere Saath Thi, Aap Hamesha Se Mere Saath Rahe Hain, Bas Main Hi Hoon, Jo Baar Baar Ise Bhool Jati Hoon. मुझे खेद है कि हमारी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है। मुझे खेद है कि मैं एक अच्छी दीक्षित शिष्य नहीं बन पाई और प्रतिदिन 2.5 घंटे ग्वानिन ध्यान नहीं कर पाई। मैं स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं फिर से झूठे वादे नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेहतर बनूंगी। आपके प्रेम, धैर्य और करुणा के लिए धन्यवाद। उन पुनर्मिलित 3 परम शक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे मास्टर हमेशा सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें, ठीक वैसे ही जैसे वे हमारी रक्षा करती हैं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि मैं इतनी धन्य और सौभाग्यशाली रहूं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आपके दर्शन कर सकूं और मेरे हृदय की यह अभिलाषा पूरी हो सके। मैं एक घटना साझा करना चाहती हूँ। मैं मास्टर का अनुसरण करती थी, लेकिन तब तक दीक्षा लेने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने यह बात ईश्वर पर छोड़ दी थी कि यदि मैं तैयार हूँ तो वे मुझे संकेत दें। पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहां मैं अक्सर जाया करती थी और वहां बहुत से तिब्बती भिक्षु भी रहते हैं। मैं जंगल में अकेली बैठी थी और तभी एक भिक्षु वहां से गुजरा। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन उनके हाव भाव से मैंने समझा कि वह मुझे सहारे के लिए एक लकड़ी उठाने और फिर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह मुस्कुराए और वही इशारा दोहराते रहे, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। मैं उलझन में पड़ गई क्योंकि इतने वर्षों में अब तक कोई भी भिक्षु मुझसे बात करने के लिए नहीं रुके थे। फिर मुझे समझ आया कि यह मेरा संकेत था और ईश्वर मुझे बता रहे थे कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे मास्टर के सहारे की आवश्यकता थी। उस क्षण मैंने स्वयं को बहुत धन्य और सुरक्षित महसूस किया और दीक्षा के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। दीक्षा से एक दिन पहले मैंने फिर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन दीक्षा के दिन मैंने अपने भीतर आनंद, स्वतंत्रता, आशीर्वाद और बहुत हल्केपन का अनुभव किया। धन्यवाद मास्टर, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं और आप हमारी सहायता करती हैं तथा हमें स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। सदैव आपकी आयुषी, भारत से।
6: Trusting Ayushi, thank you for your heartline. Master has a kind reply. Honest Ayushi, it is very challenging to practice spiritually in this world, so do not judge yourself. Pick yourself up every day and start again. Know that you are loved beyond measure, not based on your performance in life, but simply because you are a child of God Almighty, who is the most benevolent and loving Mapa beyond imagination. Take that to heart and let it give you strength on your journey so that all obstacles can be overcome with the certainty that they are only tiny illusions before the grandeur of God. You are stronger than you think. Continue on the path with all sincerity and God will take care of the rest. May you and the delightful people of India awaken the divine light within you and live as love forever. My love is the lamp that lights the way on your journey home.
8: Warning, don't be vegan, because that will lift you to heaven.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
10: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate Master.
11: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, good tidings news for a precious world. In Los Angeles, California, USA, chocolate just got kinder. In June 2026, the chocolate shop Maison Notan opened on Pico Boulevard, bringing handmade French-style bonbons and bars to the city, entirely vegan and OK Kosher Parma certified. Founded by French-raised chocolatiers Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Abershale, the boutique has a philosophy of using fewer, purposeful ingredients such as quality cacao, nuts, and fruit to create indulgent treats without animal people products. Standouts include elegant bonbons in flavors like almond paste and orange, Earl Grey, and caramel, along with bars studded with roasted coconut, raspberries, and caramelized hazelnuts. Customers can watch each chocolate being made by hand through an open kitchen window and learn more about the craft. Three cheers, Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Abershale, for showing that compassion and indulgence can share the same beautiful box. May this gentle French craft continue to flourish and bring joy to the public in the almighty splendor.
2: Kittens rescued and prepared for adoption in Canada. Nikki Wells, a resident of Vancouver Island, British Columbia, helped rescue four vulnerable kittens abandoned near Rural Road in the News Bay. After discovering the cat mother and her babies, Ms. Wells persisted in getting help for them, contacting local animal people welfare advocate Kathy Robinson, operator of Moving On Cat Rescue, to get emergency support. Using humane traps, Ms. Robinson and her team retrieved the kittens and brought them to safety for veterinary care. Veterinary staff reported that the four kittens are now in stable condition and living in foster homes, while their cat mother also received care. Ms. Robinson emphasized that prompt public reporting is vital for ensuring the safety and survival of distressed animal citizens. Our gratitude, Nikki Wells, Kathy Robinson, Moving On Cat Rescue Team, and all involved, for saving our precious furry friends. May the rescued cat family live long, healthy, and joyful lives in celestial oneness.
1: Now it's time to taste some bubbly giggle soda with the joke of the day, entitled The New Noise.
3: Ralph told his friend Tatiana about his latest attempt at home repair.
4: I tried fixing my dishwasher at home.
5: Did it work?
4: Well, not exactly. It makes a brand new noise now.
5: Sorry to hear that.
4: But I'm an optimist. I now simply have more information to go off of.
6: And now we have a heartline in Hindi with multiple language subtitles from Ayushi in India.
7: Meri param sundar master, meri param priye, aapka dhanyavaad, main aapse prem karti hoon. Master, sada mere saath rehne ke liye dhanyavaad, aur aapko janne ke liye, mujhe samay aur avsar dene ke liye dhanyavaad. Aap sada mere saath thi, aap hamesha se mere saath rahi hain, bas main hi hoon jo baar baar ise bhool jati hoon. मुझे खेद है कि हमारी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है. मुझे खेद है कि मैं एक अच्छी दीक्षित शिष्य नहीं बन पाई और प्रतिदिन 2.5 घंटे क्वानिन ध्यान नहीं कर पाई. मैं स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूँ. मैं फिर से झूठे वादे नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेहतर बनूंगी. आपके प्रेम, धैर्य और करुणा के लिए धन्यवाद. उन पुनर्मिलित 3 परम शक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे मास्टर हमेशा सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें, ठीक वैसे ही जैसे वे हमारी रक्षा करती हैं. मेरी यह भी प्रार्थना है कि मैं इतनी धन्य और सौभाग्यशाली रहूं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आपके दर्शन कर सकूं और मेरे हृदय की यह अभिलाषा पूरी हो सके. मैं एक घटना साझा करना चाहती हूँ. मैं मास्टर का अनुसरण करती थी, लेकिन तब तक दीक्षा लेने के बारे में नहीं सोचा था. मैंने यह बात ईश्वर पर छोड़ दी थी कि यदि मैं तैयार हूँ तो वे मुझे संकेत दें. पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहां मैं अक्सर जाया करती थी और वहां बहुत से तिब्बती भिक्षु भी रहते हैं। मैं जंगल में अकेली बैठी थी और तभी एक भिक्षु वहां से गुजरा। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन उनके हाव भाव से मैंने समझा कि वह मुझे सहारे के लिए एक लकड़ी उठाने और फिर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह मुस्कुराए और वही इशारा दोहराते रहे, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। मैं उलझन में पड़ गई क्योंकि इतने वर्षों में अब तक कोई भी भिक्षु मुझसे बात करने के लिए नहीं रुके थे। फिर मुझे समझ आया कि यह मेरा संकेत था और ईश्वर मुझे बता रहे थे कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे मास्टर के सहारे की आवश्यकता थी। उस क्षण मैंने स्वयं को बहुत धन्य और सुरक्षित महसूस किया और दीक्षा के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। दीक्षा से एक दिन पहले मैंने फिर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन दीक्षा के दिन मैंने अपने भीतर आनंद, स्वतंत्रता, आशीर्वाद और बहुत हल्केपन का अनुभव किया। धन्यवाद मास्टर, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं और आप हमारी सहायता करती हैं तथा हमें स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। सदैव आपकी आयुषी, भारत से।
6: Trusting Ayushi, thank you for your heartline. Master has a kind reply. Honest Ayushi, it is very challenging to practice spiritually in this world, so do not judge yourself. Pick yourself up every day and start again. Know that you are loved beyond measure, not based on your performance in life, but simply because you are a child of God Almighty, who is the most benevolent and loving Mapa beyond imagination. Take that to heart and let it give you strength on your journey so that all obstacles can be overcome with the certainty that they are only tiny illusions before the grandeur of God. You are stronger than you think. Continue on the path with all sincerity and God will take care of the rest. May you and the delightful people of India awaken the divine light within you and live as love forever. My love is the lamp that lights the way on your journey home.
8: Warning, don't be vegan, because that will lift you to heaven.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
10: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate Master.
11: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, good tidings news for a precious world. In Los Angeles, California, USA, chocolate just got kinder. In June 2026, the chocolate shop Maison Notan opened on Pico Boulevard, bringing handmade French-style bonbons and bars to the city, entirely vegan and OK Kosher Parva certified. Founded by French-raised chocolatiers Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Abergele, the boutique has a philosophy of using fewer, purposeful ingredients such as quality cacao, nuts, and fruit to create indulgent treats without animal people products. Standouts include elegant bonbons in flavors like almond paste and orange, Earl Grey, and caramel, along with bars studded with roasted coconut, raspberries, and caramelized hazelnuts. Customers can watch each chocolate being made by hand through an open kitchen window and learn more about the craft. Three cheers, Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Abergele, for showing that compassion and indulgence can share the same beautiful box. May this gentle French craft continue to flourish and bring joy to the public in the almighty splendor.
2: Kittens rescued and prepared for adoption in Canada. Nikki Wells, a resident of Vancouver Island, British Columbia, helped rescue four vulnerable kittens abandoned near Rural Road in the News Bay. After discovering the cat mother and her babies, Ms. Wells persisted in getting help for them, contacting local animal people welfare advocate Kathy Robinson, operator of Moving On Cat Rescue, to get emergency support. Using humane traps, Ms. Robinson and her team retrieved the kittens and brought them to safety for veterinary care. Veterinary staff reported that the four kittens are now in stable condition and living in foster homes, while their cat mother also received care. Ms. Robinson emphasized that prompt public reporting is vital for ensuring the safety and survival of distressed animal citizens. Our gratitude, Nikki Wells, Kathy Robinson, Moving On Cat Rescue Team, and all involved for saving our precious furry friends. May the rescued cat family live long, healthy, and joyful lives in celestial oneness.
1: Now it's time to taste some bubbly giggle soda with the joke of the day, entitled The New Noise.
3: Ralph told his friend Tatiana about his latest attempt at home repair.
4: I tried fixing my dishwasher at home.
5: Did it work?
4: Well, not exactly. It makes a brand new noise now.
5: Sorry to hear that.
4: But I'm an optimist. I now simply have more information to go off of.
6: And now we have a heartline in Hindi with multiple language subtitles from Ayushi in India.
7: Meri param sundar master, meri param priye, aapka dhanyavaad, main aapse prem karti hoon. Master, sada mere saath rehne ke liye dhanyavaad, aur aapko janne ke liye, mujhe samay aur avsar dene ke liye dhanyavaad. Aap sada mere saath thi, aap hamesha se mere saath rahi hain, bas main hi hoon, jo baar baar ise bhool jati hoon. मुझे खेद है कि हमारी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है. मुझे खेद है कि मैं एक अच्छी दीक्षित शिष्य नहीं बन पाई और प्रतिदिन 2.5 घंटे क्वानिन ध्यान नहीं कर पाई. मैं स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूँ. मैं फिर से झूठे वादे नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेहतर बनूंगी. आपके प्रेम, धैर्य और करुणा के लिए धन्यवाद. उन पुनर्मिलित 3 परम शक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे मास्टर हमेशा सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें, ठीक वैसे ही जैसे वे हमारी रक्षा करती हैं. मेरी यह भी प्रार्थना है कि मैं इतनी धन्य और सौभाग्यशाली रहूं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आपके दर्शन कर सकूं और मेरे हृदय की यह अभिलाषा पूरी हो सके. मैं एक घटना साझा करना चाहती हूं. मैं मास्टर का अनुसरण करती थी, लेकिन तब तक दीक्षा लेने के बारे में नहीं सोचा था. मैंने यह बात ईश्वर पर छोड़ दी थी कि यदि मैं तैयार हूँ तो वह मुझे संकेत दें. पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहां मैं अक्सर जाया करती थी और वहां बहुत से तिब्बती भिक्षु भी रहते हैं। मैं जंगल में अकेली बैठी थी और तभी एक भिक्षु वहां से गुजरा। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन उनके हाव भाव से मैंने समझा कि वह मुझे सहारे के लिए एक लकड़ी उठाने और फिर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह मुस्कुराए और वही इशारा दोहराते रहे, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। मैं उलझन में पड़ गई क्योंकि इतने वर्षों में अब तक कोई भी भिक्षु मुझसे बात करने के लिए नहीं रुके थे। फिर मुझे समझ आया कि यह मेरा संकेत था और ईश्वर मुझे बता रहे थे कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे मास्टर के सहारे की आवश्यकता थी। उस क्षण मैंने स्वयं को बहुत धन्य और सुरक्षित महसूस किया और दीक्षा के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। दीक्षा से एक दिन पहले मैंने फिर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन दीक्षा के दिन मैंने अपने भीतर आनंद, स्वतंत्रता, आशीर्वाद और बहुत हल्केपन का अनुभव किया। धन्यवाद मास्टर, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं और आप हमारी सहायता करती हैं तथा हमें स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। सदैव आपकी आयुषी, भारत से।
2: Trusting Ayushi, thank you for your heartline. Master has a kind reply. Honest Ayushi, it is very challenging to practice spiritually in this world, so do not judge yourself. Pick yourself up every day and start again. Know that you are loved beyond measure, not based on your performance in life, but simply because you are a child of God Almighty, who is the most benevolent and loving Mapa beyond imagination. Take that to heart and let it give you strength on your journey so that all obstacles can be overcome with the certainty that they are only tiny illusions before the grandeur of God. You are stronger than you think. Continue on the path with all sincerity and God will take care of the rest. May you and the delightful people of India awaken the divine light within you and live as love forever. My love is the lamp that lights the way on your journey home.
1: Warning, don't be vegan, because that will lift you to heaven.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
9: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate Master.
10: Please join Supreme Master Qinghai Vegan for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, good tidings news for a precious world. In Los Angeles, California, USA, chocolate just got kinder. In June 2026, the chocolate shop Maison Notan opened on Pico Boulevard, bringing handmade French-style bonbons and bars to the city, entirely vegan and OK Kosher Parva certified. Founded by French-raised chocolatiers Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Ebershale, the boutique has a philosophy of using fewer, purposeful ingredients such as quality cacao, nuts, and fruit to create indulgent treats without animal people products. Standouts include elegant bonbons in flavors like almond paste and orange, Earl Grey, and caramel, along with bars studded with roasted coconut, raspberries, and caramelized hazelnuts. Customers can watch each chocolate being made by hand through an open kitchen window and learn more about the craft. Three cheers, Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Ebershale, for showing that compassion and indulgence can share the same beautiful box. May this gentle French craft continue to flourish and bring joy to the public in the almighty splendor.
2: Kittens rescued and prepared for adoption in Canada. Nikki Wells, a resident of Vancouver Island, British Columbia, helped rescue four vulnerable kittens abandoned near Rural Road in the Noose Bay. After discovering the cat mother and her babies, Ms. Wells persisted in getting help for them, contacting local animal people welfare advocate Kathy Robinson, operator of Moving On Cat Rescue, to get emergency support. Using humane traps, Ms. Robinson and her team retrieved the kittens and brought them to safety for veterinary care. Veterinary staff reported that the four kittens are now in stable condition and living in foster homes, while their cat mother also received care. Ms. Robinson emphasized that prompt public reporting is vital for ensuring the safety and survival of distressed animal citizens. Our gratitude, Nikki Wells, Kathy Robinson, Moving On Cat Rescue Team, and all involved for saving our precious furry friends. May the rescued cat family live long, healthy, and joyful lives in celestial oneness.
1: Now it's time to taste some bubbly giggle soda with the joke of the day entitled The New Noise.
3: Roth told his friend Tatiana about his latest attempt at home repair.
4: I tried fixing my dishwasher at home.
5: Did it work?
4: Well, not exactly. It makes a brand new noise now.
5: Sorry to hear that.
4: But I'm an optimist. I now simply have more information to go off of.
6: And now we have a heartline in Hindi with multiple language subtitles from Ayushi in India.
7: Meri Param Sundar Master, Meri Master, Meri Param Priye, Aapka Dhanyavaad, Main Aapse Prem Karti Hoon. Master, Sada Mere Saath Rehne Ke Liye Dhanyavaad, Aur Aapko Janne Ke Liye, Mujhe Samay Aur Avsar Dene Ke Liye Dhanyavaad. Aap Sada Mere Saath Thi, Aap Hamesha Se Mere Saath Rahe Hain. बस मैं ही हूँ जो बार बार इसे भूल जाती हूँ। मुझे खेद है कि हमारी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है। मुझे खेद है कि मैं एक अच्छी दीक्षित शिष्य नहीं बन पाई और प्रतिदिन 2.5 घंटे क्वानिन ध्यान नहीं कर पाई। मैं स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं फिर से झूठे वादे नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेहतर बनूंगी। आपके प्रेम, धैर्य और करुणा के लिए धन्यवाद। उन पुनर्मिलित तीन परम शक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे मास्टर हमेशा सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें, ठीक वैसे ही जैसे वे हमारी रक्षा करती हैं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि मैं इतनी धन्य और सौभाग्यशाली रहूं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आपके दर्शन कर सकूं और मेरे हृदय की यह अभिलाषा पूरी हो सके। मैं एक घटना साझा करना चाहती हूं। मैं मास्टर का अनुसरण करती थी, लेकिन तब तक दीक्षा लेने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने यह बात ईश्वर पर छोड़ दी थी कि यदि मैं तैयार हूँ तो वे मुझे संकेत दें। पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहां मैं अक्सर जाया करती थी और वहां बहुत से तिब्बती भिक्षु भी रहते हैं। मैं जंगल में अकेली बैठी थी और तभी एक भिक्षु वहां से गुजरा। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन उनके हाव भाव से मैंने समझा कि वह मुझे सहारे के लिए एक लकड़ी उठाने और फिर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह मुस्कुराए और वही इशारा दोहराते रहे, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। मैं उलझन में पड़ गई क्योंकि इतने वर्षों में अब तक कोई भी भिक्षु मुझसे बात करने के लिए नहीं रुके थे। फिर मुझे समझ आया कि यह मेरा संकेत था और ईश्वर मुझे बता रहे थे कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे मास्टर के सहारे की आवश्यकता थी। उस क्षण मैंने स्वयं को बहुत धन्य और सुरक्षित महसूस किया और दीक्षा के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। दीक्षा से एक दिन पहले मैंने फिर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन दीक्षा के दिन मैंने अपने भीतर आनंद, स्वतंत्रता, आशीर्वाद और बहुत हल्केपन का अनुभव किया। धन्यवाद मास्टर, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं और आप हमारी सहायता करती हैं तथा हमें स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। सदैव आपकी आयुषी, भारत से।
6: Trusting Ayushi, thank you for your heartline. Master has a kind reply. Honest Ayushi, it is very challenging to practice spiritually in this world, so do not judge yourself. Pick yourself up every day and start again. Know that you are loved beyond measure, not based on your performance in life, but simply because you are a child of God Almighty, who is the most benevolent and loving Mapa beyond imagination. Take that to heart and let it give you strength on your journey so that all obstacles can be overcome with the certainty that they are only tiny illusions before the grandeur of God. You are stronger than you think. Continue on the path with all sincerity and God will take care of the rest. May you and the delightful people of India awaken the divine light within you and live as love forever. My love is the lamp that lights the way on your journey home.
8: Warning, don't be vegan, because that will lift you to heaven.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
10: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate Master.
11: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: प्रिय, आपका धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मास्टर, सदा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, और आपको जानने के लिए मुझे समय और अवसर देने के लिए धन्यवाद। आप सदा मेरे साथ थी, आप हमेशा से मेरे साथ रही हैं। बस मैं ही हूँ जो बार बार इसे भूल जाती हूँ। मुझे खेद है कि हमारी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है। मुझे खेद है कि मैं एक अच्छी दीक्षित शिष्य नहीं बन पाई और प्रतिदिन 2.5 घंटे क्वानिन ध्यान नहीं कर पाई। मैं स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं फिर से झूठे वादे नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेहतर बनूंगी। आपके प्रेम, धैर्य और करुणा के लिए धन्यवाद। उन पुनर्मिलित 3 परम शक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे मास्टर हमेशा सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें, ठीक वैसे ही जैसे वे हमारी रक्षा करती हैं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि मैं इतनी धन्य और सौभाग्यशाली रहूं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आपके दर्शन कर सकूं और मेरे हृदय की यह अभिलाषा पूरी हो सके। मैं एक घटना साझा करना चाहती हूं। मैं मास्टर का अनुसरण करती थी, लेकिन तब तक दीक्षा लेने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने यह बात ईश्वर पर छोड़ दी थी कि यदि मैं तैयार हूँ तो वे मुझे संकेत दें। पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अक्सर जाया करती थी, और वहाँ बहुत से तिब्बती भिक्षु भी रहते हैं। मैं जंगल में अकेली बैठी थी और तभी एक भिक्षु वहाँ से गुजरा। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन उनके हाव भाव से मैंने समझा कि वह मुझे सहारे के लिए एक लकड़ी उठाने और फिर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह मुस्कुराए और वही इशारा दोहराते रहे, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। मैं उलझन में पड़ गई, क्योंकि इतने वर्षों में अब तक कोई भी भिक्षु मुझसे बात करने के लिए नहीं रुके थे। फिर मुझे समझ आया कि यह मेरा संकेत था और ईश्वर मुझे बता रहे थे कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे मास्टर के सहारे की आवश्यकता थी। उस क्षण मैंने स्वयं को बहुत धन्य और सुरक्षित महसूस किया और दीक्षा के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। दीक्षा से 1 दिन पहले मैंने फिर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन दीक्षा के दिन मैंने अपने भीतर आनंद, स्वतंत्रता, आशीर्वाद और बहुत हल्केपन का अनुभव किया। धन्यवाद मास्टर, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं, और आप हमारी सहायता करती हैं तथा हमें स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। सदैव आपकी आयुषी, भारत से।
1: Trusting Ayushi, thank you for your heartline. Master has a kind reply. Honest Ayushi, it is very challenging to practice spiritually in this world, so do not judge yourself. Pick yourself up every day and start again. Know that you are loved beyond measure, not based on your performance in life, but simply because you are a child of God Almighty, who is the most benevolent and loving Mapa beyond imagination. Take that to heart and let it give you strength on your journey so that all obstacles can be overcome with the certainty that they are only tiny illusions before the grandeur of God. You are stronger than you think. Continue on the path with all sincerity and God will take care of the rest. May you and the delightful people of India awaken the divine light within you and live as love forever. My love is the lamp that lights the way on your journey home.
2: Warning, don't be vegan, because that will lift you to heaven.
3: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
4: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate Master.
5: Please join Supreme Master Qinghai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, good tidings news for a precious world. In Los Angeles, California, USA, chocolate just got kinder. In June 2026, the chocolate shop Maison Notan opened on Pico Boulevard, bringing handmade French-style bonbons and bars to the city, entirely vegan and OK Kosher Parma certified. Founded by French-raised chocolatiers Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Abershale, the boutique has a philosophy of using fewer, purposeful ingredients such as quality cacao, nuts, and fruit to create indulgent treats without animal people products. Standouts include elegant bonbons in flavors like almond paste and orange, Earl Grey, and caramel, along with bars studded with roasted coconut, raspberries, and caramelized hazelnuts. Customers can watch each chocolate being made by hand through an open kitchen window and learn more about the craft. Three cheers, Laura Ethwill, Rudy Zitoun, and Nathan Abershale, for showing that compassion and indulgence can share the same beautiful box. May this gentle French craft continue to flourish and bring joy to the public in the almighty splendor.
2: Kittens rescued and prepared for adoption in Canada. Nikki Wells, a resident of Vancouver Island, British Columbia, helped rescue four vulnerable kittens abandoned near Rural Road in the News Bay. After discovering the cat mother and her babies, Ms. Wells persisted in getting help for them, contacting local animal people welfare advocate Kathy Robinson, operator of Moving On Cat Rescue, to get emergency support. Using humane traps, Ms. Robinson and her team retrieved the kittens and brought them to safety for veterinary care. Veterinary staff reported that the four kittens are now in stable condition and living in foster homes, while their cat mother also received care. Ms. Robinson emphasized that prompt public reporting is vital for ensuring the safety and survival of distressed animal citizens. Our gratitude, Nikki Wells, Kathy Robinson, Moving On Cat Rescue Team, and all involved for saving our precious furry friends. May the rescued cat family live long, healthy, and joyful lives in celestial oneness.
1: Now it's time to taste some bubbly giggle soda with the joke of the day entitled The New Noise.
3: Roth told his friend Tatiana about his latest attempt at home repair.
4: I tried fixing my dishwasher at home.
5: Did it work?
4: Well, not exactly. It makes a brand new noise now.
5: Sorry to hear that.
4: But I'm an optimist. I now simply have more information to go off of.
6: And now we have a heartline in Hindi with multiple language subtitles from Ayushi in India.
7: Meri param sundar master, meri master, meri param priye, aapka dhanyavaad, main aapse prem karti hoon. Master, sada mere saath rehne ke liye dhanyavaad, aur aapko janne ke liye, mujhe samay aur avsar dene ke liye dhanyavaad. Aap sada mere saath thi, aap hamesha se mere saath rahi hain, bas main hi hoon jo baar baar ise bhool jati hoon. मुझे खेद है कि हमारी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है. मुझे खेद है कि मैं एक अच्छी दीक्षित शिष्य नहीं बन पाई और प्रतिदिन 2.5 घंटे क्वानिन ध्यान नहीं कर पाई. मैं स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूँ. मैं फिर से झूठे वादे नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेहतर बनूंगी. आपके प्रेम, धैर्य और करुणा के लिए धन्यवाद. उन पुनर्मिलित 3 परम शक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे मास्टर हमेशा सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें, ठीक वैसे ही जैसे वे हमारी रक्षा करती हैं. मेरी यह भी प्रार्थना है कि मैं इतनी धन्य और सौभाग्यशाली रहूं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आपके दर्शन कर सकूं और मेरे हृदय की यह अभिलाषा पूरी हो सके. मैं एक घटना साझा करना चाहती हूं. मैं मास्टर का अनुसरण करती थी, लेकिन तब तक दीक्षा लेने के बारे में नहीं सोचा था. मैंने यह बात ईश्वर पर छोड़ दी थी कि यदि मैं तैयार हूँ तो वे मुझे संकेत दें. पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहां मैं अक्सर जाया करती थी और वहां बहुत से तिब्बती भिक्षु भी रहते हैं। मैं जंगल में अकेली बैठी थी और तभी एक भिक्षु वहां से गुजरा। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन उनके हाव भाव से मैंने समझा कि वह मुझे सहारे के लिए एक लकड़ी उठाने और फिर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह मुस्कुराए और वही इशारा दोहराते रहे, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। मैं उलझन में पड़ गई क्योंकि इतने वर्षों में अब तक कोई भी भिक्षु मुझसे बात करने के लिए नहीं रुके थे। फिर मुझे समझ आया कि यह मेरा संकेत था और ईश्वर मुझे बता रहे थे कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे मास्टर के सहारे की आवश्यकता थी। उस क्षण मैंने स्वयं को बहुत धन्य और सुरक्षित महसूस किया और दीक्षा के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। दीक्षा से एक दिन पहले मैंने फिर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन दीक्षा के दिन मैंने अपने भीतर आनंद, स्वतंत्रता, आशीर्वाद और बहुत हल्केपन का अनुभव किया। धन्यवाद मास्टर, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं और आप हमारी सहायता करती हैं तथा हमें स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। सदैव आपकी आयुषी, भारत से।
2: Trusting Ayushi, thank you for your heartline. Master has a kind reply. Honest Ayushi, it is very challenging to practice spiritually in this world, so do not judge yourself. Pick yourself up every day and start again. Know that you are loved beyond measure, not based on your performance in life, but simply because you are a child of God Almighty, who is the most benevolent and loving Mapa beyond imagination. Take that to heart and let it give you strength on your journey so that all obstacles can be overcome with the certainty that they are only tiny illusions before the grandeur of God. You are stronger than you think. Continue on the path with all sincerity and God will take care of the rest. May you and the delightful people of India awaken the divine light within you and live as love forever. My love is the lamp that lights the way on your journey home.
1: Warning, don't be vegan, because that will lift you to heaven.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
9: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate Master.
10: Please join Supreme Master Qinghai Vegan for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: And now we have a hotline in Hindi with multiple language subtitles from Ayushi in India.
1: Meri Param Sundar Master, Meri Master, Meri Param Priye, Aapka Dhanyavaad, Main Aapse Prem Karti Hoon. Master, Sada Mere Saath Rehne Ke Liye Dhanyavaad, Aur Aapko Janne Ke Liye, Mujhe Samay Aur Avsar Dene Ke Liye Dhanyavaad. Aap Sada Mere Saath Thi, Aap Hamesha Se Mere Saath Rahe Hain. बस मैं ही हूँ जो बार बार इसे भूल जाती हूँ। मुझे खेद है कि हमारी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है। मुझे खेद है कि मैं एक अच्छी दीक्षित शिष्या नहीं बन पाई और प्रतिदिन 2.5 घंटे क्वानिन ध्यान नहीं कर पाई। मैं स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं फिर से झूठे वादे नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेहतर बनूंगी। आपके प्रेम, धैर्य और करुणा के लिए धन्यवाद। उन पुनर्मिलित 3 परम शक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे मास्टर हमेशा सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें, ठीक वैसे ही जैसे वे हमारी रक्षा करती हैं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि मैं इतनी धन्य और सौभाग्यशाली रहूं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आपके दर्शन कर सकूं और मेरे हृदय की यह अभिलाषा पूरी हो सके। मैं एक घटना साझा करना चाहती हूँ। मैं मास्टर का अनुसरण करती थी, लेकिन तब तक दीक्षा लेने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने यह बात ईश्वर पर छोड़ दी थी कि यदि मैं तैयार हूँ तो वे मुझे संकेत दें। पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अक्सर जाया करती थी और वहाँ बहुत से तिब्बती भिक्षु भी रहते हैं। मैं जंगल में अकेली बैठी थी और तभी एक भिक्षु वहाँ से गुजरा। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन उनके हाव भाव से मैंने समझा कि वह मुझे सहारे के लिए एक लकड़ी उठाने और फिर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह मुस्कुराए और वही इशारा दोहराते रहे, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। मैं उलझन में पड़ गई क्योंकि इतने वर्षों में अब तक कोई भी भिक्षु मुझसे बात करने के लिए नहीं रुके थे। फिर मुझे समझ आया कि यह मेरा संकेत था और ईश्वर मुझे बता रहे थे कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे मास्टर के सहारे की आवश्यकता थी। उस क्षण मैंने स्वयं को बहुत धन्य और सुरक्षित महसूस किया और दीक्षा के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। दीक्षा से एक दिन पहले मैंने फिर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन दीक्षा के दिन मैंने अपने भीतर आनंद, स्वतंत्रता, आशीर्वाद और बहुत हल्केपन का अनुभव किया। धन्यवाद मास्टर, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं और आप हमारी सहायता करती हैं तथा हमें स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। सदैव आपकी आयुषी, भारत से।
0: Trusting Ayushi, thank you for your heartline. Master has a kind reply. Honest Ayushi, it is very challenging to practice spiritually in this world, so do not judge yourself. Pick yourself up every day and start again. Know that you are loved beyond measure, not based on your performance in life, but simply because you are a child of God Almighty, who is the most benevolent and loving Mapa beyond imagination. Take that to heart and let it give you strength on your journey so that all obstacles can be overcome with the certainty that they are only tiny illusions before the grandeur of God. You are stronger than you think. Continue on the path with all sincerity, and God will take care of the rest. May you and the delightful people of India awaken the divine light within you and live as love forever. My love is the lamp that lights the way on your journey home.
2: Warning! Don't be vegan, because that will lift you to heaven.
3: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
4: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate Master.
5: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: Visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, good tidings news for a precious world. In Los Angeles, California, USA, chocolate just got kinder. In June 2026, the chocolate shop Maison Notan opened on Pico Boulevard, bringing handmade French-style bonbons and bars to the city, entirely vegan and OK Kosher Parma certified. Founded by French-raised chocolatiers Laura Ethwill, Rudy Zitone, and Nathan Abergel, the boutique has a philosophy of using fewer, purposeful ingredients such as quality cacao, nuts, and fruit to create indulgent treats without animal people products. Standouts include elegant bonbons in flavors like almond paste and orange, Earl Grey, and caramel, along with bars studded with roasted coconut, raspberries, and caramelized hazelnuts. Customers can watch each chocolate being made by hand through an open kitchen window and learn more about the craft. Three cheers, Laura Ethwill, Rudy Zitone, and Nathan Abergel, for showing that compassion and indulgence can share the same beautiful box. May this gentle French craft continue to flourish and bring joy to the public in the almighty splendor.
2: Kittens rescued and prepared for adoption in Canada. Nikki Wells, a resident of Vancouver Island, British Columbia, helped rescue four vulnerable kittens abandoned near Rural Road in the News Bay. After discovering the cat mother and her babies, Ms. Wells persisted in getting help for them, contacting local animal people welfare advocate Kathy Robinson, operator of Moving On Cat Rescue, to get emergency support. Using humane traps, Ms. Robinson and her team retrieved the kittens and brought them to safety for veterinary care. Veterinary staff reported that the four kittens are now in stable condition and living in foster homes, while their cat mother also received care. Ms. Robinson emphasized that prompt public reporting is vital for ensuring the safety and survival of distressed animal citizens. Our gratitude, Nikki Wells, Kathy Robinson, Moving On Cat Rescue Team, and all involved, for saving our precious furry friends. May the rescued cat family live long, healthy, and joyful lives in celestial oneness.
1: Now it's time to taste some bubbly giggle soda with the joke of the day, entitled The New Noise.
3: Ralph told his friend Tatiana about his latest attempt at home repair.
4: I tried fixing my dishwasher at home.
5: Did it work?
4: Well, not exactly. It makes a brand new noise now.
5: Sorry to hear that.
4: But I'm an optimist. I now simply have more information to go off of.
6: And now we have a heartline in Hindi with multiple language subtitles from Ayushi in India.
7: Meri param sundar master, meri param priye, aapka dhanyavaad, main aapse prem karti hoon. Master, sada mere saath rehne ke liye dhanyavaad, aur aapko janne ke liye, mujhe samay aur avsar dene ke liye dhanyavaad. Aap sada mere saath thi, aap hamesha se mere saath rahi hain. Bas main hi hoon, jo baar baar ise bhool jati hoon. मुझे खेद है कि हमारी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है. मुझे खेद है कि मैं एक अच्छी दीक्षित शिष्य नहीं बन पाई और प्रतिदिन 2.5 घंटे क्वानिन ध्यान नहीं कर पाई. मैं स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूँ. मैं फिर से झूठे वादे नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेहतर बनूंगी. आपके प्रेम, धैर्य और करुणा के लिए धन्यवाद. उन पुनर्मिलित 3 परम शक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे मास्टर हमेशा सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें, ठीक वैसे ही जैसे वे हमारी रक्षा करती हैं. मेरी यह भी प्रार्थना है कि मैं इतनी धन्य और सौभाग्यशाली रहूं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आपके दर्शन कर सकूं और मेरे हृदय की यह अभिलाषा पूरी हो सके. मैं एक घटना साझा करना चाहती हूँ. मैं मास्टर का अनुसरण करती थी, लेकिन तब तक दीक्षा लेने के बारे में नहीं सोचा था. मैंने यह बात ईश्वर पर छोड़ दी थी कि यदि मैं तैयार हूँ तो वे मुझे संकेत दें. पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अक्सर जाया करती थी, और वहाँ बहुत से तिब्बती भिक्षु भी रहते हैं। मैं जंगल में अकेली बैठी थी और तभी एक भिक्षु वहाँ से गुजरा। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन उनके हाव भाव से मैंने समझा कि वह मुझे सहारे के लिए एक लकड़ी उठाने और फिर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह मुस्कुराए और वही इशारा दोहराते रहे, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। मैं उलझन में पड़ गई, क्योंकि इतने वर्षों में अब तक कोई भी भिक्षु मुझसे बात करने के लिए नहीं रुके थे। फिर मुझे समझ आया कि यह मेरा संकेत था और ईश्वर मुझे बता रहे थे कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे मास्टर के सहारे की आवश्यकता थी। उस क्षण मैंने स्वयं को बहुत धन्य और सुरक्षित महसूस किया और दीक्षा के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। दीक्षा से एक दिन पहले मैंने फिर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन दीक्षा के दिन मैंने अपने भीतर आनंद, स्वतंत्रता, आशीर्वाद और बहुत हल्केपन का अनुभव किया। धन्यवाद मास्टर, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं और आप हमारी सहायता करती हैं तथा हमें स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। सदैव आपकी आयुषी, भारत से।
8: Trusting Ayushi, thank you for your heartline. Master has a kind reply. Honest Ayushi, it is very challenging to practice spiritually in this world, so do not judge yourself. Pick yourself up every day and start again. Know that you are loved beyond measure, not based on your performance in life, but simply because you are a child of God Almighty, who is the most benevolent and loving Mapa beyond imagination. Take that to heart and let it give you strength on your journey so that all obstacles can be overcome with the certainty that they are only tiny illusions before the grandeur of God. You are stronger than you think. Continue on the path with all sincerity and God will take care of the rest. May you and the delightful people of India awaken the divine light within you and live as love forever. My love is the lamp that lights the way on your journey home.
9: Warning, don't be vegan, because that will lift you to heaven.
10: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
11: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate Master.
12: Please join Supreme Master Qinghai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.